0: আমরা ভাষণ আমরা পুরো চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখো অবগ স্বাস্থ্য
1: गाड़ी पीड़ित रहे तीन तह का सरकार को समूह में आवश्यक लगातार खबर अभी कार्यक्रम बाकी समस्या साझा।

0: சமாஜத்தில் பார்க்கிறார்கள், அதையோ சமுதாய சூழ்நிலை என்ற சீராகிறார்.
1: रसोमा एक भीषण बाढी पछि विभिन्न जिल्लाका खानेपानीका मुहान दूषित हुन सक्ने भन्ने किसानहरू

जिला स्तरीय विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन होने मैदान को ट्रैक निर्माण भएको पाँच वर्ष में जीर्ण भएको बताइएको छ। जिला खेलकूद विकास समिति

0: काली भाई ती पावती पाई जा रहा वो पढ़े ना दुकान पर से तुम अच्छा तो रहा कहाँ से गिला पुस्तक दिया सप्लास
1: वो तो जानता कोई नहीं था जो नौजी लोग सहकारी मचिक पासर वहाँ दुकान वहाँ बहुत केसों से उत्तर और सरल बात कोई नहीं था जो
2: हसन का अपना पर एक की सीखे अधिकारा उस समान लेना चाहती और बढ़ने का पास वाली मरहर पशुपति का सप्लास मा इंडियन इटालियन धान पर खाने पर साइंस और इंडियन मिनिटर अनुराइन मिल राइस मिल चारा मिशिंग हार्वेस्टर साफ वाटर वगैरह पशुपंक्षी का दाना बना प्लेट मिशिंग कोयला का स्थान संग खेती किसानी करना सब कुछ एक समान उपलब्ध बना उसे का बिगड़ सब कुछ कृषि का मिशिंग के विशेष रूप में अपना जाए खबर का लसे घर हम सबसे बनाए था हजुर का अपना किस संबंधी को समान किया सहकी यदि चाहती कर से श्रम सभ्य पांच सौ जुमार पशुपति नाथ सप्लाय
1: संपर्क नंबर 98582025014 हो 98224086
2: नवजीवन सहकारी संस्थाको पछि पुरान पसल र ठाउँ सेरो कम्प्युटर पार्लर

0: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउ।
1: चिसो पदार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ। सुखमय जीवन बिताउ।

0: किशोरी रक्त अल्पता
1: बर्दिया जिल्ला धेर किशोरी हुकनक म रक्त कमी अर्थात रक्त अल्पता देख परलवा
0: रक्त अल्पता हुई सड टटका रावण लग्ना चक्कर अनुहार फिक्का हुई हो पढ़ाई में ध्यान निजेना समस्या लान
1: रक्त अल्पता में से बचक लाग काइल साग पात दाल घुरी ग्यारा आरा मच्छी शिकार ओ फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड कम करी संतुलित घर खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य एक आधार हो
2: रेडियो गुरुबाबा FM द्वारा जनहित मजारी संदेश
0: आमाको दूध बच्चाको पहिलो औषधि हो जन्मेको एक घण्टा भित्र अनिवार्य स्तनपान शुरू गरौ छ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाऊ स्वस्थ बच्चा उज्यालो भविष्य स्तनपान गराउ स्वास्थ्य बचाउ
2: रेडियो गुरुबाबा FM द्वारा जनहित मजारी संदेश
3: घरमै बनेको पोसिलो कुरा खाना छ महिना पछि अनिवार्य शुरू गरौं अन्न गेडागुडी साग सब्जी फलफूल सहितको पोसिलो पूरक खानाले बच्चालाई तन्दुरुस्त बनाउँछ पूरक खाना सँगसँगै दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी राखौं
2: रेडियो गुरुबाबा FM द्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: राम राम हो दाजु पावर टिलर लेखले हेर्नु का खोजती
5: का रही भाइ यी पावर टिलर बनाइना रह ओहो बनाइना दोकान खोजतु अठा त रह कहाँ चल गेल ना पशुपतिनाथ सप्लायर
6: ऊ दुकान त उहेरी दाजु नवजीवन सहकारी पछिक पाँजर पुरान दुकान रहन रोड के सोझे उत्तर ओर सरल बा उहेरी दाजु
7: हजुर का आफ्नो हुक्रा फे कृषि खेती कला कुछ सामान लेह चाहटी अब बर्दिया का बाँसगढी मा रहल पशुपतिनाथ सप्लायर्स मा इन्डियन इटालियन धान कटना रिपर चाइनिजो इन्डियन मिनी टेलर कम्बाइन मिल राइस मिल चारा मेसिन हार्वेस्टर साप कटर लगायत पशु पंक्षी का दाना बनाना प्लेट मेसिन पैना का संगसंग खेती किसानी करना सक उमेरिक सामान उपलब्ध बा ओसे का बिगड़ल सक उमेरिक कृषि का मेसिन फे विशेष छूट में बना जाए खबर करल से घर मजा का फे बना हजूर का अपना फे कृषि संबंधी कौनो सामान किन चाहती यदि चाहती कल से समझबी अब पांच कड़ी मरल पशुपतिनाथ सप्लायर
6: सम्पर्क नम्बर 9858025014 ओ 9824026680
7: नवजीवन सहकारी संस्थाका पछ्यौ पुरान पसल रलक ठाउँ से रोडका उत्तर पाँच रलक जानकारी

जय गुरुबाबा। संध्या 5 बजे गुरुबाबा मौसम बुलेटिन में स्वागत बा। मई बिन्दु चौधरी। बर्दिया में आज बिहान से पानी परल रह चल तथा मौसम विज्ञान विभाग देश का पानी पर्ना व बर्दे लग्ना कहलबा कालफे तराई के एक दुई ठाव में पानी परसेकना पूर्वानुमान कल्बा। आज बर्दिया में पर्ल पानी ने धान बाली में व्यवस्थापनकला साग्लोज 75% 2 ग्राम मिलीलिटर पानी दरले प्रत्येक 12 से 14 दिन का फरक में 203 फैरासम्मको बाढ़ भिन्ना बेखर छिटकन उपचार प्रसेकना नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नाक जनेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा यी साताका सुरु अन्त्यम धेर ठाउँमा पानी परसेकना सम्भावना रहेका साताको मध्यम ओभर एक दुई ठाउँमा पानी परसेकना पूर्वानुमान कलम चल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनेटमा। मौसम बुलेटिन लेखाने जोगाटी तब सबका प्राथमिक संघ को शंकर मोबाइल बिंदु।

0: संध्या समाज छ बजे हमारा संदेश में अपना स्वागत बात संख्या बिंदु संग्रह कुमार उत्पादित हमार संदेश प्रतिया का साथी एफ एम राजापुर में सक्रिय प्रसंग प्रसारण विधिवा हमार संदेश का भरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक में से महासवाड़ी में फैम टीरो क्रिया में 50% अनुदान का लाख आवेदन में बर्खा में डेंगू तथा भाइरल जन्य रोग का जोखिम घटाए महासवाड़ी में सामुदायिक सचेतना बारह पर्दिया में शिक्षक भूकर पेशागत सिकाई संचालन संचार निर्माण छोटे कोशी बहिया पास रोजगारी 3 करोड़ वो मृतक परिवार खाना 1 लाख देना वो रसुआ बहिया में मृतक का संख्या 626 पुगल सब व्यवस्थापन और चुनौती
1: बांसुरी नगरपालिका प्रत्येक जिला को कहूँ 39 जिला में 50% अनुदान उपलब्ध करेगा बता नगर पालिका के कृषि विकास शाखा आर्थिक वर्ष 2083-84 का वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक जिला में 50% अनुदान सर्वथा कृषक तालीम कार्यक्रम को कहूँ 19 जिला में 50% अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन कर रखा को कार्यक्रम अंतर्गत कृषक अंकन करने बीमटेक जियाओ गहू का उन्नत बिया 50% अनुदान में वितरण करना कृषि विकास शाखा जाने के बाद कृषि उत्पादन वृद्धि किसानों का उन्नत वृद्धि तथा स्तरीय बिया में पहुँच विस्तार हो कृषि का व्यवसायीकरण में सहयोग पुगेन उद्देश्य कार्यक्रम संचालन कर कार्यक्रम में सहभागी हुए इच्छुक किसान किसान समूह कृषि फर्म तथा कृषि सहकारी पर आवेदन पेश कर नगर पालिका सूचना जारी कर रख सूचना प्रकाशन विधायक मिति 35 दिन भित्र 2083/14 सब आवश्यक कागजात सहित आवेदन पेश कर जिला में 50% अनुदान सहित तथा किसान तालीम कार्यक्रम में सहभागी हुआ इच्छुक किसान कृषक समूह कृषि फर्म तथा कृषि सहकारी अपन निवेदन नागरिकता का प्रमाण पत्र का प्रतिलिपि समूह सहकारी व कृषि फर्म का प्रमाण पत्र का प्रतिलिपि व समूह व सहकारी का निर्णय का प्रतिलिपि पेश कर पड़ेगा विषय का कोह कुंड जात के दिया में अनुदान सहित कार्यक्रम अति विपन्न मुक्त कमैया मुक्त कमलारी तथा दलपीड़ित किसान का प्राथमिकता में देगा वहाँ हमका निवेदन नागरिकता प्रमाण पत्र का प्रतिलिपि तथा समूह सहकारी वाले कृषि फार्म का प्रमाण पत्र का प्रतिलिपि पेश कर पड़ा कृषि विकास शाखा चलेगा नगर पालिका प्रकल्प समय के चार आवश्यक कागजात सहित आवेदन पेश करेगा अनुदान कार्यक्रम और यह इच्छुक किसान तथा संबंधित कृषि सहकारी कृषि समूह उठाम अंकन अर्जी करेगा बांसगिरी नगर पालिका बोर्खा में डेंगू लगायत भाइरल जन्य रोग का संक्रमण का जोखिम बढ़ा देखा कटी गांव तथा टोल स्तर में सामुदायिक सचेतना अभियान संचालन कर रहा बांसगिरी नगर पालिका स्वास्थ्य शाखा नगर विद्या कृषक को स्वास्थ्य संस्थापन परिचालन के घर डेंगू तथा भाइरल जन्य रोग मशीन बचने उपाय बारे समुदाय में सचेतना फैलाए रखो बर्खा में पानी जमना ठाउँ मच्छरन का प्रजनन बहना र नकुर्सी डेंगू को जोखिम समेत बहना घटी स्वास्थ्य शाखा घर अंगन तथा जतकारी जमीन लिएर वातावरण सफा गर्न को मच्छरन का कटाई बसी बचना उपाय अपनाए समुदाय पर सचेत गरेला जना दिवा सँग जर पैना लगायतका स्वास्थ्यमा समस्या युक्त बसी समयमा स्वास्थ्य संस्थानमा पुग्न समेत अर्जी गर्न हुँदा उसैको भएर जाने रोगको संक्रमण बसी बस्छ वातावरण सरसफाई सँग व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिन साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुन तथा स्वच्छ र स्वस्थ जीवन शैली अपनाए समुदाय कम सचेत गरेन स्वास्थ्य शाखा जाने जग्गा अस्कारी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्व बहादुर विश्वको अनुसार नगर विभाग सबको स्वास्थ्य संस्था बसे गाउँ तथा प्रभावक डेङ्गू लगायत भाइरल जाने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायबारे नागरिकहरूका जानकारी गराइने काम गोटेलबाट बर्खामा डेङ्गू तथा अरू भाइरल जाने रोगका संक्रमण बसे नगरमा
0: खास गरी नगरपालिकाका गौरीशङ्कर युनाइटेड युवा क्लबको आयोजनामा आजले सुरु हुनाथै जिल्ला खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता वर्षागत स्थगित गर्दा दशरथका खेल मैदानमा दिनका 2 बजे आज 13 गते उद्घाटन गर्न कार्यक्रम तय हुनसकेपछि लगातार वर्षाका कारण मैदान खेल्न योग्य नै मिल्दा छ सूचनाय प्रतियोगिता स्थगित गर्न आयोजक समयमा आयोजक प्रतियोगिता स्थगित निरतमा सूचकको टोलीका कप्तान तथा खेल प्रेमी कन्से च्यामा स्नाकर्ती रोबर्ट मिटीको समय ओला सूचनामा सार्वजनिक गर्न चलाइरहेका गुणस्तरीय शिक्षाका आधार सुदृढ गर्न उद्देश्यले 12 वर्गीय नगरपालिकामा करिब 500 शिक्षक भूगण समेटका तहगत तथा विषयका शिक्षक रोस्टर गठन गरिएका सुरक्षित भविष्य परियोजना सहकार्यमा गठन गरिएका रोस्टर शिक्षक बीच ज्ञानशिप अनुभवको असल अभ्यास साता साथ गरेका सहकर्मीले सिक्न संस्कृतिको विकास शिक्षा सिकाइका गुणस्तर अभिवृद्धि तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारमा सहयोग गर्न लक्ष्य लिएका प्रक्रियामा सुरक्षित भविष्य परियोजना
2: अब
1: Thank you. त्यसैले खनाल महत्वपूर्ण प्राकृतिक विपद बाजार राहत कार्यालय तीव्रता बिहार सरकार मित्र राष्ट्रपति निर्मित प्रविधिक प्राविधिक सहयोगको प्रस्ताव कलम जानकारीबाट आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवर्ती खनाल फरेन्सिक क्षमता अभिवृद्धि विगत क्षेत्रमा राहत पुगाए आधुनिक प्रविधिका आवश्यकता लगभग लखेका मध्य खनालका अनुसार

tal, mazuri tal, ipol tal, adam tal, bering tal, kiluringi tal, hujai. Jodi ni sarat baru sanjalan mana aika hun. Yu sangai thading sarat mukam thading besi, puna sarat sanjalan jodi ekosa. Mata budak mana rasua ko bote ko si malai ko padi ni thading besi jari tisu di mati ko pul korawda. Sarat mukam sangla ko sarat sampaka tu tikotio. Sarkali rasua bahinga ka udar gare ro usar gare reka अस्पताल को नाम पर ही सार्वजनिक रिकॉर्ड सार्वजनिक विवरण अनुसार रसुआ जिला अस्पताल तीसरी अस्पताल आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालय नुआकोट राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर वीरेंद्र अस्पताल छावनी टीचिंग अस्पताल वीर अस्पताल पाटन अस्पताल नागरिक अस्पताल में उतार कर व्यक्ति को उपचार भैरिक मनमोहन अस्पताल नागरिक इंटरनेशनल अस्पताल मनमरीज शुभम इंटरनेशनल अस्पताल ग्रीन सिटी अस्पताल एम्स अस्पताल प्रसूति गृह थापाथली एपीएफ अस्पताल और ग्रांड इंटरनेशनल अस्पताल में उद्धार कर बिरामी को उपचार भैर बाढ़ी का कारण प्रभावित बने रसुआ स्थित माथिल त्रिशूली तीन दी जल विद्युत आयोजना को सुरंग फंसा मानस को सुरक्षित उद्धार में चीनिया उच्च दक्ष टोली परिचालित नेपाल सरकार को अनुमति में प्राविधिक रूप में उच्च दक्ष चीनिया टोली परिचालन हो सरकार को अनुमति पश्चात छजना सम्मिलित चीनिया विद्युत टोली मैदान में खटिगा चीनिया हेलीकप्टर मार्फ सोझे त्रिशूली क्षेत्र में अवतरण उक्त टोली ने नेपाली सेना को विद्युत टोली संग पूर्ण समन्वय सहकार करते संयुक्त रूप में उद्धार को काम शुरू कर रसुआ को भोटी कोशी नदी में आयोग बाढ़ी प्रभावित बने का आवश्यक राहत सामग्री संकलन कर सरकार ने तीनवटा स्थान तोको विदेश हवाई माध्यम मार्फत आने राहत सामग्री त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमान स्थल स्थित राष्ट्रीय आपतकालीन गोदाम घर में जमा करी सरकार ने आवश्यकता अनुसार प्रभावित क्षेत्र में ती सामग्री वितरण करने इसी स्वदेश भिट प्राप्त होने राहत सामग्री क्रमश नुआकोट को भट्टार स्थित नेपाली सेना को बैरेक र धादिंग को बैरिनी बैरेक में संकलन करी प्रभावित क्षेत्र में वितरण कर बाढ़ी प्रभावित का राहत दिन चाहने व्यक्ति व संघ संस्था ने सरकार ने तोके तीन स्थान में सामग्री पुराने पर्ने कि तपाई रसुआ को बाढ़ी में पड़े अपना आतंक को खोज तथा उद्धार का आवश्यकता पड़े सबने पैसा नलाग्ने नंबर 1234 सरकार को नंबर 1111 में फोन कर मदद लिना सकूने तपाई को जानकारी भी बाढ़ी में हराया मानस को खोज तथा उद्धार छिटो अने प्रभावकारी बन सकने शनिवार दिवसों 4 बजेसम रसुआ बाढ़ी प्रभावित भर मृत्यु होने को संख्या 659 रहेको सरकार ने बताएको छ। भोटे कोशी को बाढ़ी ने धारी में बोला लिया पैसा राख्ने स्टेप फोन 29 जना सशस्त्र प्रहरी दल नेपाल प्रहरी को संयुक्त टोली ने पक्राउ गरेको छ। रसुआ को भोटे कोशी नदी में आएको बाढ़ी का कारण अवरुद्ध बनेका सड़कहरु केही मात्रामा सुचारू हुन थालेका छन्। रसुआबाट उद्धार गरिरहेका अस्थायी बसोबासका लागि नागार्जुन स्थित एउटा गुम्बामा उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूलाई राख्न सकिएको छ। रसुआ बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न नेपाललाई 20 लाख युरो मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन भएको छ। अस्ट्रेलियामा चलिरहेको टपी श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपाल फेरि भिक्टोरिया एकाडेमीसँग एक विकेटले पराजित भएको छ। अवस्था आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी राजेन्द्र रेजाललाई धन्यवाद। भोलि भरत चन्द्रजी बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई म दीपक माछाले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।

सबको चीजें मिलेगा समय को औषधि उपचार करने का छोड़ा हमें औषधि उपचार करते ही करता है अट्ठाइस अंक 4

0: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
1: चिनी उपचारार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ। सुखमय जीवन बिताऊ।
2: रेडियो पूर्वाधार एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।